माँ बस अब मुझे काम का बना दे, मैं कब से हूँ महवे ख्वाब गफलत, बस अब जगा दे, बस अब जगा दे।

हैं, बस एक अगर हूं तो खार में हूं। तेरे गुलिस्तान में सब गुल है, बस एक अगर हूं तो खार।

मांग ताऊं, वो हो जाए मेरा मैं हो जाऊं उसका, यही रात दिन में दुआ मांगता हूं। वो हो जाए मेरा मैं हो जाऊं उसका, यही रात दिन में दुआ मांगता हूँ। कोई मुझसे पूछे मैं क्या मांगता हूँ, मैं अपने खुदा से खुदा मांगता हूँ। वो हो जाए मेरा मैं हो जाऊं उसका, यही रात दिन में दुआ मांगता हूँ।

सब खुशियों को आग लगा दूं, गम से तेरे दिल शाद रहे। सबको नजर से अपनी गिरा दूं, तुझसे फकत फरियाद रहे। अब तो रहे बस ता

इधर मजाल है, लॉन्ग टाइम हैवन रेड दिस मजाल है, कुछ भी कर सकूं मैं। मजाल है कुछ भी कर सकूं मैं, जो तू न तौफीक ऐ खुदा दे। मजाल है कुछ भी कर सकूं मैं, जो तू न तौफीक ऐ खुदा दे। तेरी मशीयत है सब पे गालिब, ये है चहे सब मेरे इरादे।

तुझे तो मालूम है इलाही, बहुत ही गंदा है हाल मेरा, गुनाह में आलूदा हो रहा है, रुआ रुआ बाल बाल मेरा।

अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है, अल्लाह जल्ल जलालू।